0: 6 बजे तक।
1: सनू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
2: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: Chak de phatte!
6: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ।

0: रजिस्टर हमने 2022 में किया था जुलाई में और ऑफिशियली हमने काम 2023 में शुरू किया हमारा इनॉग्रेशन नवंबर 22 में हुआ एंड पे और फिर हमारा फर्स्ट मदर्स डे हमारा 2023 से शुरू हुआ था बाकी सब काम और हमारा एक और एनुअल इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है इवेंट वो भी माशाल्लाह वो उसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल मॉम्स को अवार्ड दिए जाते हैं जो कम्युनिटी में काम भी कर रही है और अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रही है जी और उनका काम हाईलाइट किया जाता है कि इतनी सारे वो डिफरेंट कैटेगरीज में होता है कि बिजनेस में मेंटल हेल्थ में कम्युनिटी वर्क में और बहुत सारे एजुकेशन में तो वुमेन्स को तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं तो वो दिन होता है जब हम सिंगल मॉम्स को सपोर्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं एंड हमारे मोस्टली आपने देखा होगा कि देयर इज नॉट लाइक एथनिक स्पेसिफिक तो सिंगल मॉम्स कोई भी किसी भी एथनिक के
1: बैकग्राउंड
0: से और एज बैरियर भी नहीं है और से वो तो वो हमारा एक एनुअल होता है और फिर ये होता है इसमें इस वाले में थोड़ा सा एक पॉइंट आता जहाँ पे सुपर मॉम्स नॉमिनेट की जाती है अभी तो हमने बंद कर दिया अभी भी रिक्वेस्ट आ रही थी जहाँ पे बच्चे अपने माओ के लिए लिखते हैं और उनके लिए कुछ माओ के लिए सरप्राइज होते थे तो ये काफी थोड़ा सा इमोशनल भी होता है फिर ये होता है कि हम काफी काम कर रहे हैं पूरी टीम के एक बहुत यादगार सा मोमेंट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सभी इतना खुश जाते हैं कि हमें ये के वो लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया कि जब थोड़ी सी खुशियां बांट ली किसी
2: wow, that's so amazing.
3: This is very nice. तो ही अपना ये जो समय जब आपने शुरू किया 2023 में तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी शुरू करने में बिकॉज इट्स नॉट इजी टू स्टार्ट एनीथिंग लाइक दिस आई एम श्योर लोर उसके जितने वो जो डोमेस्टिक जो इश्यूज हो रहे हैं
0: जी
3: आई एम श्योर कोई अपना किसी को इस तरह दिखे कि वो इतना जाके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं I'm sure that there were so many problems. So, उसमें से क्या क्या थे आपके? Like you know, just in general.
1: In general,
0: definitely जब problems तो आती हैं, especially जब आप कुछ शुरू करते हो. And single mothers पे specifically
3: not easy.
0: इससे पहले भी मैं दो तीन दफा आ चुकी हूँ रेडियो पे और सिंगल मदरहुड के बारे में बात की गई तो मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम कहते हैं ना सिंगल मदर है तो हमारे जहन में यही आता है कि किसी ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया ये वो
1: स्टिग्मा
0: तो स्टिग्मा जो है वो ऑटोमेटिकली तो सिंगल मदरहुड ये नहीं है कि सिर्फ जो अपने हस्बैंड को छोड़ती है वो उस पर भी बाद में आएंगे लेकिन कोई हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है कुछ हमारे में ऐसे हैं जिनके हस्बैंड से यहाँ पे नहीं है वो अकेले काम कर रही है हमारे कम्युनिटी में बहुत सारी सीमाएं हैं और कुछ और रीजंस होंगे और अमेजिंगली को पेरेंटिंग कर रहे हैं ये वो और सबसे पहले कि मैं ये कहूंगी कि एक घर बना होता है ना उसको वो एक कंफर्ट जोन होता है हर किसी का
1: सही
0: उस कंफर्ट को तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता चाहे मर्द हो या औरत हो तो डेफिनेटली रीजंस होते हैं और कभी कभी मसलियतें भी होती हैं और के इस नौबत पे बंदा आ जाता है कि वी पार्ट आवर वेज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट क्योंकि अगर कहीं पे एक सफोकेशन हो रही है तो फिर पर हम हमेशा क्या प्रमोट करते हैं अपनी वेल बीइंग तो अगर हम एक सिचुएशन में रह के अगर हमारी वेलबींग ही नहीं है वो इम्पोर्टेंट तो फिर इस पे तो लेकिन ये नहीं है कि जो सिंगल मॉम्स हैं वो हस्बैंड्स को छोड़ के आ गई और ये हुआ तो इट गोज बोथ वेज क्योंकि हम कम्युनिटी में काम कर रहे दोनों तरफ से होता है कभी कि हमने ऐसे आदमी भी देखे जो स्ट्रगल उन्होंने किया और ये वो तो ये तो एक और टॉपिक है जो बाद में बात करेंगे तो लेकिन शुरू में बहुत स्ट्रगल्स आई और अभी स्टेबल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी टीम है टीम बनाने में थोड़ा आया बहुत दफा में यही कहा जाता है सजेशन दी जाती है कि जी नाम चेंज कर दें आप वुमेन का ही कुछ रख लें तो ये वो तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर सिंगल मॉम्स के लिए नहीं होता या वुमेन के लिए भी है और लेकिन अगर ये ना होता तो फिर मैं ये नहीं कर रही हूँ दिस इज माई पैशन

0: specifically yeah. for them. And mostly हमारी community में हमारे बहुत सारे हमारे sessions में ऐसी single moms आती हैं जो कहती हैं कि हम कुछ देख रहे थे और हम आपको observe कर रहे थे और साल छह महीने बाद वो आती हैं हमारे पास observe करने के बाद अच्छा ये safe zone है हमारा जहाँ पे हमें कुछ समझ पाएगा बहुत सारी organizations हैं तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी नहीं उठ के ये कहेगा कि देखो मैं इस चीज से struggle कर रही हूँ कोई बड़ी organization में या जैसे कोई भी हो जाए वो ये नहीं कहेंगे कि देखो मैं मुझे problem है financial मुझे ये problem है या domestic problem है उठ के नहीं कहते और especially क्योंकि उनको तो कि अच्छा अगला सुनने वाला पता नहीं कैसे लेगा क्या समझेगा तो ये उनको ये पता चलता है कि यहाँ जी यहाँ पे कोई ऐसा है जो हमें जब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमें समझेगा तो मेजॉरिटी हमारी टीम में भी ज्यादातर हम सिंगल मॉम्स हैं जो मैनेज करती हैं इसको
1: चलो दैट्स अ ग्रेट सो तो ये इसका जो इवेंट होने जा रहा है सैटरडे को जिसका हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है टू बी हियर कि इसमें आपके 3 बजे है
0: जी
1: और जेनेसिस में है
0: जेनेसिस में
1: इसके कोई टिकट्स हैं
0: नहीं इस हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फ्री कास्ट होते हैं
1: तो फिर आपको आपको रजिस्टर करना पड़ता है
0: जी
1: ताकि पता चले कि कितने लोग आ सकते
0: जी
1: ओह ग्रेट
0: जी इसके रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे सारे सोशल मीडियाज पे है इंस्टा पे हमारा लिंक्डइन पे है हमारे फेसबुक पे है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है हमारे तो स्पेशली हमारे वो उन औरतों के लिए जो एक कंफर्ट स्पेस के लिए तो हर जगह पे हमारा वो पोस्ट है तो वो
1: हम ग्रेट थिंग या
2: तो आई एम श्योर कि ये आप जो इवेंट करते हैं इट्स नॉट फ्री फॉर यू तो आप किस तरह कवर करते हैं एक्सपेंसेस वगैरह
0: अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम प्लान करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई जोड़ देता है कोई कुछ स्पॉन्सर्स हो जाते हैं कोई छोटी मोटी फंडिंग और हम आपने देखा होगा हमारे पोस्टर पे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं तो ये एक बात भी है जब हम मिलके काम करें तो उसमें बरकत भी बढ़ी है
1: जी, जी,
0: तो हमारे ज्यादातर कोलाबरेशन में होते हैं प्रोग्राम्स तो इस टाइम भी हमारे साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलाबरेट कर रही है कैनेडियन जालमी सोसाइटी फिर ट्रेलिस प्लैनेट यूथ और भी
1: great.
0: काफी सारी जो है
1: that's
0: वो
1: great.
0: कर रहे हैं
1: yeah.
0: तो सबने मिलजुल के
1: सब
0: बांट के तो हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल इवेंट
1: एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग
0: अभी 200 से ऊपर हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है
1: जी दे मस्ट बी रियली अप्रिशिएटिंग आपने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की क्योंकि उनको पता है ये एक चाहे कुछ भी हो आप चाहे डिवोर्स्ड हो चाहे सेपरेटेड हो चाहे कोई भी रीजन की वजह से आप सिंगल हैं तो वो लोग मैंने देखा है कि जरा हिचकिचाते हैं दूसरी मिक्स गैदरिंग्स में जाने के लिए तो जब वो देखते हैं कि हमारे जैसे भी और लोग ऐसी जगहों पे आ रहे हैं तो उनका कंफर्ट जोन होता है तो वो पसंद करते हैं कि मैं खुद आ चुकी हूँ और मैंने खुद देखा हुआ है कि इट इज डन सो वेल और आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं और सबको आप यू नो यू गिव अटेंशन टू एवरीबडी तो आई थिंक दैट्स इट तो सौम्या आपने कब ज्वाइन किया इनको
3: So I joined them in around 2023 end.
1: Achha,
3: so haan ji, tab se main Calgary Single Mother Society ke saath connected hoon.
1: Okay.
3: And like I just wanted to add to your question, jaise aapne pucha ki aapko kaise pata laga ki single mothers ko, women ko kya chahiye, unki needs ke baare mein kaise pata laga. So like hum kafi programs conduct karte hain.
1: Achha.
3: And kafi programs mein hume ye sunne ko mila that single mothers and women they wanted a space. They wanted a place jahan aake wo free mind like free अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए बिकॉज आई फील एक लेडी एक फीमेल स्पेशली एक सिंगल मदर शी गोज थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस राइट एंड आई फील एवरी वन विल अग्री विद इट और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था वेयर दे कुड टॉक अबाउट इट दे कुड मीट सिमिलर वुमेन लाइक देम सो आई फील हमें वो प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट करना था एंड फाइनली वी वर एबल टू डू सो सो वी हैव लाइक वी हैव आवर टॉकिंग थेरेपी सेशंस
1: ओह गुड
3: यस सो इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म इंक्लूसिव स्पेस है जहां सिंगल मदर्स वुमेन आते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं अपनी वेलबींग को और अपलिफ्ट करते हैं सो वी हैव ट्राइड क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म तो हमारे टॉकिंग थेरेपी सेशंस हम वर्चुअली भी उनको लाइक वी कंडक्ट देम एंड हम इन पर्सन भी कंडक्ट करते हैं सो इट हैपेंस लाइक फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी

0: Oh, wow, that's great.
1: So इसमें जिनको आना तो is it only for single mothers or anyone can come?
2: It's for women.
1: It's for women,
2: yes,
1: right?
2: It's okay. for women. Single moms हो या women हो कोई भी हाँ जी वो register करके तो फिर वो हमारा intake है process उसके through फिर वो आते
3: हैं. And we would love that single mothers ज़्यादा से ज़्यादा connect करें, but we really want even women to connect. So it's an inclusive space for females specifically. हम ये चाहते थे कि ये हम create
4: करें. You know, or also एक अच्छी चीज भी है कि अगर वो सिंगल नहीं है तो वो किसी तरह हेल्प कर सकते
2: हैं. हेल्प कर सकते हैं. अवेयरनेस हम ऐसे ही ला सकते हैं ना, जब हम इंक्लूसिव रखेंगे. हम कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ सिंगल मॉम्स के लिए हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे इंक्लूसिव होते हैं वुमेन के लिए. क्योंकि अगर आप एक दूसरे की स्टोरी का नहीं पता होगा, आप कैसे हम अब तक अवेयरनेस ला सकेंगे. तो हमारे जो स्पेशली इवेंट भी होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं कि आए और फिर जाने और देखें, अप्रिशिएट करें इन चीजों को. तो एक और मैं इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि हमारे एक इवेंट पे एक सिंगल माम तो बहुत बेचारी रोने लगी और उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि और भी सिंगल माम्स.
4: अच्छा.
2: मुझे नहीं पता था
4: कितने सारे
2: तो हाँ और भी हैं, कि क्योंकि हम आइसोलेट कर लेते हैं जब कोई इस चीज से गुजर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये वो. एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बंदा एक तोड़ फोड़ से गुजर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा ये इस तरह की क्रिटिसिज्म ये करके आप उसको खड़े होने से रोक रहे होते
1: हैं. आई थिंक दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम वी हैव इन आवर कम्युनिटी.
2: एग्जैक्टली.
1: लोग ये लोग जो है लाइक यू नो दे डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर, कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा.
2: एग्जैक्टली.
1: तो यू नो रादर देन के किसी को नीचे दबाए बल्कि उनको ऊपर लिफ्ट करें, आई थिंक उसमें पूरी कम्युनिटी का फायदा है उसमें.
2: बिल्कुल.
1: एक अगर ही फैमिली के लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, वो बड़े हो गए तो उन्हीं का फायदा है. कि जो है बिगर पिक्चर इज यू नो जस्ट लुक एट द कम्युनिटी के उनका क्या.
2: एग्जैक्टली.
1: आई एम श्योर कि देयर जो है सो मच टू लर्न. खैर यू नो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम गलत करने में हमें मजा आता है. दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. हालांकि ऑफकोर्स वी डू टॉक, लेकिन हमें पता भी, लेकिन यू नो चलो यू नो देर से दुरुस्त है इंशाल्लाह. कि अगर कोई आप देखे किसी को सो प्लीज यू नो अगर आप हेल्प कर सके तो प्लीज बाय ऑल मींस. अगर आप नहीं कर सकते तो देन डोंट से एनीथिंग.
3: या आई फील इन अ वर्ल्ड व्हिच इज सो क्रिटिकल द लीस्ट वी कैन डू इज बी काइंड.
1: एग्जैक्टली.
4: या एंड यू वी डोंट नो उनकी लाइफ के साथ क्या चल रहा है.
3: किसी
4: को भी लोग होते हैं ना, ये कहते हैं ना कि ये अज्यूम करना, अंदेशे लगाना इतना बड़ा गुनाह है. ये
2: बहुत बड़ा गुनाह है.
4: तो आप को क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्यों इस तरह से हैं, उनके बच्चों का क्या हो रहा है, उनके साथ क्या किस्से हुए हैं. तो इंसान को है ना उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट उनके साथ हमेशा यू नो यू कांट क्रिटिसाइज, बट एटलीस्ट जैसे कहा कि बी काइंड, बी सपोर्टिव टू दोस काइंड ऑफ पीपल.
2: और उसमें ना मैं कहती हूँ दोनों तरफ का फायदा है. हमारा भी फायदा है कि हम किसी के लिए आसान नहीं करते, तो इसमें भी हमारा बहुत बड़ा फायदा है. और हमारा स्पेशली हमारा दीन ये कहता है कि हम स्पेशली सिंगल मॉम्स के लिए उनके साथ ज्यादा हम मर्सीफुल रहे, लेकिन सबसे ज्यादा हम हार्श उनके साथ उन्हीं के साथ है.
1: तो ये सिंगल मदर जो है कोई अपना बाय चॉइस से नहीं होता.
2: मैं जैसे पहले बताया ना कि हमारा एक घर है, हम शाम को काम छोड़ के वहाँ पे जाते हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन है. ये वो कैसे कोई एक कंफर्ट को छोड़ के तो तोड़ फोड़ करके तो निकल नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है तो तभी वो हुआ है ना. कि और स्पेशली ये एक चीज नहीं होती, ये बिल्ड अप हो रहा होता है.
1: yes,
2: कि जहाँ पे जाके हम कहते अच्छा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे जो सिंगल मॉम्स वो कहती हैं कि आप ये नहीं कहते कि क्या हुआ. अच्छा क्या करता था, या अगर आदमी है तो अच्छा तुम्हारी बीवी क्या करती थी, क्या ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ वो, ये क्वेश्चन क्यों, क्या कहा. तो ये सारे क्वेश्चन जो है, एक बंदा ना इस चीज में से जब ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन जा रही है, और स्पेशली अगर सिंगल मॉम है तो उसको हर रोज अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखना ही दिखना है, चाहे वो टूट चुके हैं चाहे नहीं है. उसने उसके पास चॉइस नहीं है. वो अब क्योंकि वो टूट जाएगी तो बच्चे
1: टूट जाएंगे.
2: तो अगर हम उसको जोड़ने में थोड़ा सा अपना

0: हिस्सा डालने तो वो एक फैमिली जो है ना उसको एक बहुत
1: बड़ा
0: सपोर्ट मिल जाएगा और अपलिफ्ट हो जाएगा और फिर हमारा एक और बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे कल्चर में जब हम को-पेरेंटिंग कर रहे होते हैं और ये के अगर कोई बात भी कर रहा है अपने एक्स से कि अच्छा हम इस पे अपने बच्चे के लिए वो अच्छा छोड़ दिए तो क्यों बात कर रही है ये अच्छा है तो तब नहीं तो फिर साथ ही रहना था ये वो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अगर सेपरेट रह के भी वो अच्छे से अपने बच्चों के खातिर कुछ कर रहा है तो वो हर एक चीज पे हम क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं तो इससे बेहतर ये है कि हम उनको सपोर्ट करें किसी तरह से भी और जैसे मैंने कहा कि हमारा भी इसमें फायदा होता है कि किसी के लिए बेहतरी करेंगे तो हमारी बेहतरी होगी
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हो
2: एंड लाइक शी मेंशनड कि सिंगल मदर्स लाइक दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बट अपने बच्चों के लिए उनको खड़ा होना लाइक दे हैव नो चॉइस राइट तो कभी कभी हमें लगता है अच्छा ये तो बहुत अच्छे से कैरी कर रही है जस्ट बिकॉज की वो अच्छे से कैरी करिए डज नॉट मीन इट्स नॉट हैवी राइट इट्स वेरी हैवी इट्स जस्ट शी डज नॉट हैव अ चॉइस और मुझे लगता है कभी कभी उस इंस्टेंसेस में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है सो दोज पीपल नीड द मोस्ट ऑफ सपोर्ट जो इतना सब कुछ अकेले कैरी कर रहे हैं एंड आई एम ग्लैड यू नो कि हम वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ सिंगल मदर्स वुमेन आए सपोर्टेड फील करें एंड आई फील We really encourage कि जो भी single mothers और women हमारे साथ connect होती हैं हम उनका भी feedback लेते हैं What do you want from us? हम और क्या services आपको दे सकते हैं Like talking therapy में हमने realize करा that there's a small gap.
1: Yeah.
2: हर single mother आके नहीं attend कर पा रही session. So we thought let's create a virtual platform.
1: Yeah, yeah.
2: In person भी create करते हैं virtual भी create करते हैं.
1: आपकी पूरे इसमें how many they're all volunteers.
0: We're all volunteers.
1: So how many do you have in the board?
0: In the board we are seven.
1: Seven, mm-hmm. Yeah, good. And
0: फिर हमारे volunteers बहुत सारे और अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे आपने पूछा कि स्ट्रगल्स क्या आई और उसके साथ स्ट्रगल भी है और आसानियां भी आई अल्लाह ताला आसानियां भी क्रिएट करते हैं कि हमें किसी को कहना नहीं पड़ता खुद लोग आके कहते हैं हम आपको हेल्प करना चाहते हैं हम वॉलंटियर करना चाहते हैं
1: और पता है अगर सिंगल मदर्स वॉलंटियर्स हैं तो उन लोग उनको पता है कि दे हैव गॉन थ्रू समथिंग एंड आइदर दे आर सेपरेटेड और विडोड और डिवोर्स्ड और वट एवर अदर रीजन और उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है और स्पाउस की डेथ हो गई है तो वो लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चीज को तो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू पीपल डूइंग हमारे एक्चुअली दूसरे गेस्ट के आने का टाइम हुआ आपके कुछ लास्ट मैसेजेस देना चाहें जब तक के वो लोग अंदर आए आपके आप मैं देना चाहेंगे मैसेज क्या
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा जुमला कहूंगी कि हम दुनिया में ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा होता है तो जैसे आज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक पत्थर भी कटा देना ना रास्ते से वो भी बहुत बड़ी नेकी है तो एक छोटा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटी से छोटी कोई नेकी कर दें किसी की जिंदगी आसान करने में तो वो भी क्या पता कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए
1: बिल्कुल थैंक यू सो मच लेकिन हम लाइक आई नो यू हैव बीन वेरी काइंड एंड यू इनवाइटेड मी मैं आपको सही बता रही हूँ 5:30 आई हैव अ डिनर टू गो टू बट उससे पहले मैं अगर पहुंच सकी एक घंटे के लिए भी मैं जरूर करूंगी एंड थैंक यू सो मच नहीं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड और आप लोगों का यहाँ आए और हमें इतनी अच्छी तरह बताया एक्सप्लेन किया तो वी विश यू ऑल द बेस्ट अच्छे काम करते रहो
2: थैंक यू आई फील आपकी वजह से वी कुड रीच आउट टू सो मेनी पीपल अरे नहीं थैंक यू सो मच
1: यू आर मोर देन वेलकम ये अच्छी बात है इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग यू पीपल आर डूइंग कंटिन्यू डूइंग इट एंड वट एवर वी कैन डू वी आर देयर फॉर यू
0: थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
3: और आज का जो शो है उसको स्पॉन्सर किया है कंटिलिस्ट टोयोटा इनका फोन नंबर 4032901111 थिंक टोयोटा थिंक द जायंट कंटिलिस्ट टोयोटा मोबाइल मॉडगेज स्पेशलिस्ट रूबीन अकासमली इनका नंबर 4038707069 इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी मॉडगेज शी वर्क्स फॉर द टीडी बैंक इनका नंबर अगेन 4038707069 हमजा बट फ्रॉम द बट कड़ा बैंकट हॉल इफ यू लुकिंग टू रेंट एन लाइक हॉल फॉर लाइक एन इवेंट और बर्थडे और एनिवर्सरी वेडिंग 5873520094 इनका नंबर है नसीम ज्वेलर्स फ्रॉम कैलगरी इफ यू लुकिंग फॉर पाकिस्तान गोल्ड डिजाइन इन कैलगरी दिस इज द ओनली प्लेस यू कैन गेट इट 8259875000 8259875000 और अगर आपने चश्मे लेने हैं लेंसेज लेने हैं तो आपको यू कैन कॉन्टेक्ट बशीर सुमानी एट आइज बाय बशीर

0: लो या फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
2: वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते केल के ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम। जी अभी हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, शी इज नॉट न्यू टू अवर शो, शी इज नॉट न्यू टू अस इधर। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, बड़ी बड़ी वीडियोस भी डाल रही है। मैंने सुना है, मैंने अभी तक वीडियो देखी नहीं पूरी अभी तक, लेकिन किसी ने मुझे बेटा कि तुमने देखा, बोला नहीं मैंने नहीं देखा है। तो मतलब वो आ रही, हम उसी को देख रहे हैं लाइव। यस, वन एंड ओनली इशिता फ्रॉम द मधुबन परफॉर्मिंग आर्ट्स। कैसी इशिता?
3: Salam namaste. It's always a pleasure to be here with you guys. It's always a pleasure. It's always like coming home.
4: Yeah. Thank you.
2: Sure. Tumhara purana dialogue hai, koi naya
3: nahi, but agar wohi feeling aati hai, ab 10 saal ho gaya hame.
2: 10 saal ho gaya. Okay, you know, like ye apna ye 10 saal ho hai, like it's been 10 years. She's with us for the World Partnership of Event.
3: Yes.
2: From the day
3: always,
2: one.
3: Always.
2: From
3: always,
2: the day one, इन्होंने हमें जो है help किया है.
4: हमेशा.
2: और बल्कि इन्होंने जो है इशिता पहले से बोलते थे कि आपका show कब हो रहा है, please let us know.
3: Yes.
2: Because we do every year as well. So, yeah. No, it's always an honor to have you.
3: Thank you. And आप अच्छे cause के लिए करते हैं.
2: इधर World Partnership of Event हो, इधर हमारा radio show हो, इधर कहीं भी हो, it's always very good to see you.
3: Yeah, absolutely. This partnership is, you know,
4: is great.
3: Forever.
2: Yes. Yeah, इसलिए तुमने जो है डेट तुमने ढूंढ के जन्म लिया है, तो हमारा हो भी नहीं सकते। देखिए एक बात है, ऑन द फेब्रुअरी 20th वी टेक्स ईच अदर हैप्पी बर्थडे।
3: राइट राइट, यू टू, दैट्स द ओनली पर्सन आई कैन से सेम टू यू।
4: या दैट्स राइट।
2: तो इस बार जो है हमारा वर्ल्ड पार्टनरशिप का इवेंट, इट्स ओनली 10 डेज अवे, मई 23rd को होने जा रहा है सुल्तान बैंक्वेट हॉल। इट्स गोइंग रियली रियली वेल सो फार, होपफुली विल बी सोल्ड आउट इन बाय दिस वीकेंड। तो इंशाल्लाह जो है अपना जो फिंगर क्रॉस। लेकिन इस बार यू नो हजरत माऊ इशिता इज पार्ट ऑफ द इवेंट। इशिता 10 साल हो गए वर्ल्ड पार्टनरशिप ऑफ चैरिटी का शो करते करते, माशाल्लाह। क्या फील होता है, कैसा फील होता है व्हेनेवर यू कम टू द हॉल?
3: आई लव द लास्ट ईयर जब हमने अभी किया था, रिसेंटली किया था,
2: नवंबर में, लास्ट
3: ईयर गॉट पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। इट वाज लाइक व्हेन यू गो देयर देयर इज अ डिफरेंट एनर्जी बिकॉज what you're doing uska intention dikhta hai aur wo feel hota hai and it's so well organized every time.
4: Thank you.
3: The biggest thing I have to, why I keep coming back for all of these events is jitna प्यार और इज्जत आप आर्टिस्ट को देते हो वो कहीं पे इतना इजीली नहीं मिलता है हमें। दिस इज व्हाई यू नो यू सी द वीडियोस आई एम मेकिंग,
4: आप लोग इज्जत के काबिल हो
3: बिकॉज यू गाइस गिव द लव एंड रिस्पेक्ट टू द आर्टिस्ट एंड यू गाइस आर ऑथेंटिक टू द कॉज, दैट्स व्हाट कीप्स अस कमिंग बैक।
4: थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन तुम्हारी डे वन से, तुम्हारी और तुम्हारे सारी टीम की डे वन से, जब से हमने वर्ल्ड पार्टनरशिप वॉक का शुरू किया, तुम लोग ने हर साल हमको सपोर्ट किया बहुत ही खुले दिल के साथ, और बहुत अच्छे से आते हो, बहुत खूबसूरत तुम लोगों के डांसेस होते हैं और सबको अच्छा लगता है।
3: Thank
4: और
3: you.
4: बड़े डिसेंट, बहुत यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट यू पीपल, द वे यू ड्रेस अप, यू आर एलिगेंट, यू आर ग्रेसफुल।
3: थैंक यू।
4: देयर इज सो मच grace in your dance, so that is a very important thing.
3: Absolutely,
4: very important,
3: especially in this day and era where everything else but dancing is selling. It's about, it's not about art anymore, it's about everything else.
4: No, but you know dance is such an art, you know, that you can't just spoil it by by doing so many different things. I don't have to say that, people understand. But from day one, whenever you came, I said, oh, Ishita ka group aa raha hai, to bas phir theek hai, you know, like, so it's so good.
3: Oh, that is so sweet.
4: It's so good. Yeah. No, and it's going to be amazing again, because wo jo hamara singer hai, pair jo hai, Alex aur Moa ka, people love them. Their singing, their chemistry, their the songs they choose, they cater to all the audience, from young to old to, you know, they all enjoy it. So this is very important, you know.
3: I've kind of become familiar with Alex recently, and I think he's a wonderful guy and artist, and I think I'm so excited to see him. I'm gonna try my best to make it. I'm gonna try to come as early as possible back from Edmonton to come back and watch it. And my artists are preparing something different and unique for this this year's World Partnership Walk. It's definitely going to be something jo लोगों के इमोशंस, और आपने आई थिंक वो पीस थोड़ा सा देखा हो।

0: Edmonton?
1: This year it's happening in Edmonton.
0: It changes places.
1: I think it does.
0: Yeah.
1: I haven't followed the competition too closely, but yeah, I think it does.
0: Does.
1: Yeah, yeah.
0: Great. And it's good for you that you don't have to go too
1: far. We want to be on a platform where real dancing is showcased. Yeah.
2: तो इस बार का जो है का जो हमारा जो अपना फंड होने जा रहा है फॉर द वर्ल्ड पनिश हुआ इनके हमारे जो है टाइटल स्पॉन्सर कंट्रील टोयोटा एंड साउथ पॉइंट टोयोटा और इट्स जो है पावर्ड बाय वॉच वेयर हाउस जो कि नूरुद्दीन कासिम अली और इसके जो मेगा स्पॉन्सर है बेदवान्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑफकोर्स और इशिता देयर ग्रुप विल बी परफॉर्मिंग प्लस हमारे साथ जो है बजाज फिरोज इज अवर स्पॉन्सर एज वेल सेम एज ए कास्केट प्रिंटिंग एंड सेम एज सुल्तान बैंकेट हॉल दे आर वन ऑफ अवर स्पॉन्सर प्लस वहां पर जो है रेफरल ड्रॉप भी होगा बहुत सारा सलमान जी की वहां पर पेंटिंग भी होगी फॉर द ऑक्शन और तो जो है विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह होपफुली जितने थोड़ी टिकट रह गए हैं तो प्लीज गेट योर टिकट्स यू कैन कॉल मी और सलमा जी एनीवन और इवन जो बीना जी इवन जो है ईशिता शी कैन कन्वे द मैसेज एंड होपफुली एवरीवन विल बी देयर एंड वी कैन हैव प्लस एलेक्स एंड मोआ फ्रॉम टोरंटो शी इज कमिंग फ्रॉम टोरंटो जस्ट फॉर दिस एंड वी गोना हैव अ लाइव बैंड एज वेल विद फुल डिनर फ्रॉम सुल्तान बैंक्वेट हॉल ईशिता एक जो है सलमा जी का क्वेश्चन था कि बिरयानी कब खिला रही हो
1: आप बताओ मुझे हमें जाना है आई विल टेक यू गाइस इट्स अ 10th ईयर
0: उनका मतलब नहीं समझी
2: नहीं मेरा मतलब ये था कि अपना अपना 10 ईयर का ही
1: ही ओनली केयर्स अबाउट फूड कोई भी ओकेजन हो
2: वैसे अभी खिलाया नहीं है 10 साल में एक बिरयानी भी नहीं खिलाया
1: वी शुड गो एक्चुअली वी हैव इट्स मधुबन्स 10th ईयर दिस ईयर बट इट्स आल्सो आवर 10th ईयर
2: या
1: वी शुड गो फॉर अ सेलिब्रेशन
2: यू नो का भी 10 ईयर
1: है इट इज
2: तो बिकॉज़ वी स्टार्टेड
1: At the same
2: Back
1: time,
2: forth, yeah.
1: You guys were my first ever radio interview. Yeah. I was so nervous coming on. मैं कभी उससे पहले रेडियो पे नहीं गई थी. No.
2: अभी हम नर्वस हो जाते हैं.
0: भाई अब तो ये
2: सेलिब्रेट.
1: I was literally 23. I was so nervous.
0: तो सेलिब्रेट हो गई.
2: तो वो अच्छा 10 साल पहले 23 की थी. तो अभी 13 की हो गई तुम.
1: हाँ. I just reduced. Yeah.
2: No. I think no. It's always a fun to have you.
0: Yeah.
2: इस बार के इवेंट पे जो है बहुत अच्छा होने वाला है सलमा जी विल गिव यू लॉट्स ऑफ डिटेल
0: या सो आपको जैसे कि मालूम है कि वर्ल्ड पार्टनरशिप वॉक यू नो ये क्यों करते हैं हम लोग ये दिस विमेन स्टार्टेड इट इन वैंकूवर दे वांटेड टू गिव बैक समथिंग वेयर दे केम फ्रॉम लाइक ईस्ट अफ्रीका दे वांटेड टू हेल्प द विमेन देयर तो उन्होंने अपना ये ग्रुप शुरू किया बट इट वेंट सो सक्सेसफुल दैट 1000 विमेन जॉइंड देम एंड देन Our Khan Foundation saw that and they said, this is amazing. Why don't we take this under our umbrella and make it an yearly thing? So it's been going on for last 42 years and it happens in 13 cities across Canada. And hamara jo walk hai wo 31st May ko hoga at Princess Island Park. Aur jo hamara event hai wo 23rd May, which is a Saturday, सुल्तान बैंक्वेट हॉल में होगा हमारे डोर्स खुलेंगे 7 बजे और हमारा सब प्रोग्राम शुरू हो जाएगा 8 बजे तो आप आइए मिंगल विद ईच अदर एंड देन आवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वर्ल्ड पार्टनरशिप विल कम एंड से फ्यू वर्ड्स एंड दिस इज अगेन एज अ रिफ्रेशर फॉर सो मेनी दैट Our tickets are, people are saying that our tickets are a little expensive, but there is a reason behind it. Because every ticket ka jo hoga hissa, wo donation mein jayega. So we don't come and say ke aap do iske liye. Aap khud already, jab aap le rahe hain ticket, to aapka usme hissa aa jata hai. Lekin, phir wahan par representative baithe hue honge aur aap $5, $10, $20 जो भी दे सकते हैं दें
2: या तो ना दें
0: ना दें कोई आपको फोर्स नहीं करेगा वहां आपको कोई के भाई आप दो ही दो लेकिन वहां रेफल जो होगा वो आप बाय करें टिकट्स क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे प्राइसेस वहां होते हैं आप कुछ भी जीत सकते हो और रेफल के जो पैसे होते हैं वो भी jate hain towards the funds and then my artwork is always there I've been supporting world partnership walk for last 35 years and every year I make some artwork and jo bhi wo bikti hain uske bhi paise wahin jate hain aur every year I've been doing it so it's a under one roof you are getting so much you are getting beautiful music you are getting beautiful dances and amazing dancers

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
6: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल

0: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 4039036757। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमी नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
1: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
0: अपने घर दा दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
4: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
0: वधिया घर खरीदना है, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
4: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
0: घर खरीदण ते बेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
4: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
0: जेकर कर रहे हो घर खरीदण ते बेचण दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उनां दी वेबसाइट mandeep.realtor।
4: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।

0: ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइना नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते, पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हाँ। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
3: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: ताजिया सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
4: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
4: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
4: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222।
5: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतां दा एक बार फिर स्वागत करदे हां जी। 6 बजे तक मेरा ते आप जी दा साथ रहेगा इस प्रोग्राम दे विच। आप जी नूं दस्ती के प्रोग्राम पहुंचाउण लई आप जी तक साडे स्पॉन्सरां दा बहुत वड्डा योगदान है। ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 587-832-1208। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ 403-903-6757 403-903-6757। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 403-404-3500 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 825-760-9383 8257600983। समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच समोसा हाउस जो कि हुण मदर इंडिया रेस्टोरेंट बन चुका है जी। मदर इंडिया रेस्टोरेंट जो 24 घंटे 7 दिन खुलता है। नॉर्थ इंडियन ते साउथ इंडियन फूड ते होर हर तरह का फूड जिहड़ा सब

0: और उसके बाद उसमें और कुछ नया जोड़कर इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। मोदी जी ने जो घोषणा की है वो एक लगता है कि स्कूल टीचर बनकर वो देश को संदेश दे रहे हैं, उस संदेश का खुद पालन नहीं कर रही है। आपने बता दिया क्या असर पड़ा जब वो देश की जनता को बोल के कि अब बहुत बड़ा संकट आने वाला है और आपको कमर कसना है और हवाई जहाज में बैठ के चल पड़े चार देशों की यात्रा पर, तो देश में इसका मजाक ही उड़ा ना। और उसके बाद उनके मंत्रियों का, नेताओं का जो चरित्र रहा, जो व्यवहार रहा, तो इसलिए जनता आज के दिन यही कह रही है कि भाई कमर कसना हमारे लिए और मौज मस्ती तुम्हारे लिए, ये कहां का न्याय है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि वो मौज मस्ती करे ना करे, सवाल यह है कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा मार्च बीत गया, पूरा अप्रैल बीत गया, मई के कई दिन बीत गए जैसा आप कह रहे हैं 72 दिन, और उसके बाद इन दिनों में उन लोगों ने कोई उदाहरण सेट नहीं किया, जनता को आगाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहा था, चुनाव जीतना सबसे बड़ा उद्देश्य है इस सरकार का, इस पार्टी का। तो हम चुनाव में फंसे रहे, किसी ने कोई मितव्ययता नहीं की, आज भी नहीं कर रहे हैं, और जब तक सरकार इसका उदाहरण नहीं सेट करेगी तब तक जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मोदी जी कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। मोदी जी जिस तरह की पोशाक पहनते हैं और जो चश्मा पहनते हैं, पॉकेट में जो पेन रखते हैं, क्या दुनिया देश की जनता नहीं जानती है कि कहाँ के बने हुए हैं और कितना खर्च उस पे होता होगा? तो वो कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई एक शाम का भोजन छोड़ दो तो लोगों ने एक शाम का भोजन छोड़ दिया था। उसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपील की तो जनता ने उसको गंभीरता से लिया। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करी, ये बात उनको करनी चाहिए थी मार्च के प्रथम सप्ताह में, लेकिन नहीं किया क्योंकि चुनाव था, और अब किया लेकिन उदाहरण उसका सेट नहीं किया बल्कि अपना आचरण ठीक उसके विपरीत किया। और कहां गए, कहां की यात्रा पर गए? वो जा रहे हैं फिनलैंड, वो जा रहे हैं नॉर्वे, वो जा रहे हैं हॉलैंड, और वो रास्ते में इटली रुकते हुए आएंगे। अब ये तीनों देश जो है उत्तर यूरोप के देश है, गर्मी में बहुत अच्छा ठंडा रहता है यहां पर, तो बढ़िया है, घूम घाम के आए। प्रधानमंत्री इटली की हैं, उनसे मिल लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा उनको, तो घूम के आइए। अब क्या है, जो हमको भुगतना है, देश की जनता को भुगतना है, भुगतेगी। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखे।
1: लेकिन ये बताइए सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री तो कहेंगे देखिए हम कितने चिंतित हैं, हमने जनता से जैसे 72 घंटे पहले अपील की प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में कि हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है, पेट्रोल डीजल बचाओ, एक साल सोना मत खरीदो, विदेश यात्राएं मत करो, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज करो, तो उन्होंने जनता को से त्याग की अपील कर दी है कि 140 करोड़ जनता है वो अब त्याग करे, वो मेट्रो से चले, वो बस से चले, वो इस मई जून की गर्मी में सार्वजनिक परिवहन से चले, कारों को गैरेज में लगा दे और उसके बाद वो त्याग करे। मोदी जी का काफिला जैसा कि आपने कहा, हम तो तस्वीरें ने लगातार दिखाई, क्योंकि हैदराबाद में भाषण के बाद उनका रोड शो, जामनगर में उनका रोड शो, कल उसका जिक्र किया कि असम में कितने तामझाम के साथ कितने प्राइवेट जेट उतरे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा विमान उतरा होगा और सैकड़ों गाड़ियां नहीं हजारों गाड़ियां कल उन लोगों को ढोने में लगी होगी जिसमें लाखों लोग। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, जनता की जिम्मेदारी तय कर दी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं आप वाजपेयी सरकार में 2002 से 2004 और उसके पहले जिस दौर का आपने जिक्र किया 91, उस दौर के भी आप चश्मदीद रहे। तो अब मैं उस खतरे को भापना चाहता हूं आपके जरिए, जिस खतरे को भारत सरकार ने छिपा रखा है और वो आने वाले दिनों, जैसे उदय कोटक, मैंने इसलिए जिक्र किया सर क्योंकि एक कारोबारी आदमी अगर ये बोल रहा है कि बहुत बड़ा शौक आने वाला है, बहुत बड़ा शौक, और इस शौक के लिए तैयार रहिए, तो इसका मतलब

0: अभी तक जो छिपाया गया चुनाव की वजह से अब वो खतरा आने वाला है, तो क्या हो सकता है?
1: देखिए उदय कोटक ने बिल्कुल सही कहा और जो भी जानकार लोग हैं वो इस बात को जानते थे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये जो युद्ध है अभी तो खैर एक प्रकार का युद्ध विराम है लेकिन अस्थिर स्थिति है और खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि हम 80% से भी ज्यादा कच्चे तेल का आयात करते हैं, ये सर्वविदित है। मोदी जी ने ठीक कहा कि हमारे देश में तेल के कुएं नहीं है, बहुत सारे देशों में भी नहीं है, हमारे यहां भी नहीं है, लेकिन 80% से ज्यादा जो हम कच्चा तेल आयात करते हैं वो कच्चा तेल जो है वो एक बेस प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका असर व्यापक पड़ता है अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि जो तेल रिफाइन होता है वो केवल हवाई जहाज और मोटर और ये चलाने में मोटरसाइकिल चलाने में नहीं खर्च होता है, उसका ज्यादा खर्च होता है इंडस्ट्री में, उद्योग धंधे में, और उस तेल की कीमत बढ़ जाती है दो कारणों के चलते, आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो कच्चे तेल की कीमत ऐसी अंतरराष्ट्रीय बाजार में $60 प्रति बैरल होती थी तो अभी 110, 115, कभी $120 तक पहुंच गई। ये जो है ये स्थिति होने वाली थी, ये उसी दिन पता चल गया था जब युद्ध शुरू हुआ। दूसरी बात कि हमारा रुपया जो है ना वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, 95 के ऊपर चला गया। तो अब होता क्या है कि हम जो तेल खरीदते हैं उसको हम डॉलर में खरीदते हैं और देश में बेचते हैं उसको रुपए में, तो इन दोनों कारणों के चलते कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई, दूसरा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, इन दोनों कारणों के चलते तेल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा होना चाहिए था। अब 1,000 करोड़ प्रतिदिन तेल कंपनियों का घाटा है, ऐसा सरकारी अनुमान है, 1,000 करोड़ प्रतिदिन। तो अब क्या है, अब आपके आप दिखा रहे हैं कि हरदीप पुरी, इनसे बेकार वाहियात मिनिस्टर शायद पूरी सरकार में नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अब कब तक तेल कंपनियां इसको बर्दाश्त करेंगी। तेल कंपनियां उस समय तक बर्दाश्त करेंगी जब तक सरकार उनको नहीं इजाजत देगी कि तुम कीमत बढ़ाओ, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो शायद वो तेल की कीमत बढ़ाने की इजाजत देंगे तेल कंपनियां।
0: उन्होंने कहा भी दिया, हरदीप पुरी ने कहा है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रही और खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया गया तो ये नुकसान 3 महीने में 1,00,000 करोड़ का होगा। मतलब उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में अब कीमत बढ़ने वाली है, अब ये जनता पर लोड ट्रांसफर होगा। और एक बात आपने सही की, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 72वें दिन कहते हैं कि हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है तो भाई ये 28 फरवरी को भी पता था तेल के कुएं नहीं है, वो 1 मार्च, 2 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल हर समय पता था तेल के कुएं नहीं है, हर समय पता था कि आप 80-85% तेल इंपोर्ट करते हैं, हर समय पता था कि तेल की कीमतें अगर 110-105 बैरल जा रही और बढ़ेगी तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर, रुपए सब पर इम्पैक्ट होगा, ये पता था। सवाल उठता है जो आपने कहा चुनाव तक, यही हम लोग मान रहे हैं कि चुनाव तक ये उनकी फितरत है सर, चुनाव जब खत्म हुआ नतीजे आ गए, अगले दिन से बयान आए और उसके बाद प्रवचन आए। अब सिर्फ मैं एक जानकारी के लिए जनता को कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 82 देशों की एक लिस्ट जारी की, वो लिस्ट मेरे पास है जिन देशों ने क्या क्या किया पहले हफ्ते में और दूसरे तीसरे हफ्ते में। 25 देशों ने तेल की राशनिंग और स्पीड लिमिट कम कर दी, उसके अलावा अलग अलग देशों की जो मुहिम चली जिसमें कुछ देशों ने कर दिया, जो टोटल 82 देश है ईंधन की सेविंग की, कुछ देशों ने कर दिया कि जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, कुछ 14 देशों ने वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी, और दुनिया के उन देशों ने, एक लंबी लिस्ट है, 8 देशों ने एसी कूलिंग तक की लिमिट तय कर दी कि 25 डिग्री से आप नीचे न ले जाएं, 6 देशों ने स्कूल और यूनिवर्सिटी के टाइमिंग में ये कर दिया स्पीड लिमिट, हर चीज, एक लंबी लिस्ट है सर, मैं सिर्फ दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम लोग खाम

0: आलोचना करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देश, तमाम देशों ने बहुत तरह के जो मेजर जो होते हैं इसके लिए, इटली, स्पेन, चीन, ब्राजील, फ्रांस, सबने तरह तरह का ऐसे इंतजाम किए जिससे एनर्जी सेविंग हो, रेगुलेट हो, जनता को इस बात का एहसास हो और उसके बाद पेट्रोल बचाने, तेल बचाने, एनर्जी बचाने के लिए सजगता आए। और बहुत चीज मैंने बताया, एक लंबी लिस्ट हमारे पास। भारत सरकार, हरदीप पुरी लगातार ये कहते रहे हमारे पास तेल भंडार की कमी नहीं है, अमित शाह चुनाव में कहते रहे किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, और प्रधानमंत्री ऐसी बात कहा गया, दो दिन पहले राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि हमारे पास किसी तरह की किल्लत नहीं। तो ये जनता की आंखों में धूल झोंक रहे, क्योंकि चुनाव के समय आप सच भी बयां नहीं करना चाहते थे और अब वो धोखे से आप पर्दा हटा रहे हैं, तो अल्टीमेटली खामियाजा जनता भुगते कि आपने 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन पहले तैयारी की होती।
1: देखिए अंजुम जी, जनता इसको भुगत रही है, ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में भुगतेगी। अभी मैं बताना चाहता हूं आपको, इसके पहले मैं झारखंड में अपने गांव में था, कुकिंग गैस जो है उसके सिलेंडर की इतनी भारी किल्लत थी कि वो मिल नहीं रहा था लोगों को, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था, जिसको बहुत आवश्यकता होती थी वो 3,000-4,000 रुपया देकर एक सिलेंडर खरीद कर लाता था। दिल्ली में भी लगभग वही हालत हो गई। तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है एक तरफ, दूसरी तरफ इन्होंने इंडस्ट्रियल डीजल जो है उसकी कीमत बढ़ा दी, तो कीमत बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि उद्योगों का कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ गया। आपने वो दृश्य भी देखा होगा जबकि लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए महाराष्ट्र में, गुजरात में, और वो कौन लोग हैं, वो यूपी बिहार के लोग हैं ज्यादातर। अब वो वापस लौटने के लिए उसी तरह मजबूर हुए जिस तरह कोविड में हुए थे, और वो दृश्य आप नहीं भूले होंगे जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत हो गया, अब हम दोबारा लौट कर इधर नहीं आएंगे। तो तरफ कोविड में उनको सहारा था मनरेगा का, अब मनरेगा को इन्होंने तहस नहस कर दिया, उसको कौन जी राम जी करके लाए हैं एक नया, जो कि कह रहे हैं कि 1 जुलाई से लागू होगा, तो राम जी के भरोसे देश को छोड़ दिया है, अपने आप हवाई जहाज लेकर चले गए विदेश और जनता भुगते। ये स्थिति आज इस देश की हो गई है, और मुझे कोई विश्वास नहीं है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी का क्रिटिक हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक देश एक भयंकर संकट में फंसने वाला है। कब तक ईरान अमेरिका के युद्ध चलेगा कहना मुश्किल है, तेल के भंडार डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एलपीजी का जो स्टोरेज था वो इस तरह डिस्ट्रॉय हो गया है कि उसको बनाने में 5 साल लग सकता है। तो ये संकट ऐसा नहीं है कि एक दिन ट्रंप साहब ने बंद कर दिया है युद्ध तो ठीक हो गया, क्योंकि जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा, और इसी बीच में दुनिया के सारे देशों को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और आपने वो बता भी दिया अपने श्रोताओं को कि कौन कौन सी तैयारी कितने देशों ने की है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि प्रदेशों का चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण था, देश की जनता को अंधेरे में रखा, और अब बड़ी बड़ी बातें बोलकर खुद हवाई जहाज में बैठकर विदेश यात्रा पर निकाल गए। तो कौन विश्वास करेगा, कौन कमर कसेगा।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। लेकिन पिछले कुछ दो जड़े सरकार ने आउटलुक फाइनैशियल प्रोजैक्शन जड़िया दतिया सी, वह कहा गया सी कि 2026 अलबर्टा सरकार 9.4 बिलियन के वित्तीय घाटे वालू बढ़ रही है, 9.4 बिलियन।